0: बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो ही बोलो ही बोलो कुछ तो बोलो
1: सुदीले कुआं विदुलिया।